ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। टोक्यो के मशरक में वाके चिबा प्रिफेक्चर में हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड शदीद बारिश के बाद 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उनका कहना है कि एक शख्स लापता है। हुकाम के मुताबिक 130 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। उनका कहना है कि ज़ेरे आब आने वाले घरों में से 1489 घरों में पानी फर्श की सतह से नीचे रहा, जबकि 1206 में फर्श की सतह से ऊपर आ गया। हुक्काम का कहना है कि बुध की दोपहर 1 बजे तक 59 अफराद बल्दियात की जानिब से नामजद करदा इनखलाई मराकज़ में मुकीम थे। ज़ेरे आब आने के बाद शहर की सड़कों पर छोड़ी गई तकरीबन 2500 गाड़ियों को मुंतकिल करने का काम जारी है। छोड़ी गई गाड़ियों से निपटने के लिए मंगल को एक प्रोजेक्ट टीम तश्कील दी गई। इसमें प्रिफेक्चर, चिबा शहर और मरकजी हुकूमत के साथ साथ गाड़ियां खींचने वाले ट्रकों की सनद के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये टीम गाड़ियों के मालिकान की शनाख्त करेगी और इन्हें ले जाने की दरख्वास्त करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत ICC के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर रही है। इसकी जानिब से सदर मोहतरमा अकाने तोमोको समेत अदालत की क़यादत पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अकाने एक जापानी जज हैं जिन्होंने 2024 में ओहदा संभाला था। अमरीकी वजारत खारजा ने मंगल के रोज़ वजीर खारजा मार्को रूबियो का एक बयान जारी किया। इसमें ICC को बदउनवान और तबाहकुन हद तक सियासत ज़दा करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अदालत अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। इन पाबंदियों में अमरीका में मौजूद किसी भी असासे को मुंजमद करने पर जोर दिया गया है। वजारत खारजा ने यह भी कहा कि वो उस वक्त तक मज़ीद कार्रवाई करने के लिए तैयार है जब तक कि ICC अमरीकी खुद मुख्तारी को मज़ीद ख़तरे में ना डाल सके। अमरीकी हुकाम ने अदालत की जानिब से अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात की मंजूरी पर एतराज़ किया है। उन्होंने मुबैना जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत भी की है। हुकाम ने इन मुकदमात में मुलव्वस जजों और इस्तगासा पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ICC की जानिब से पाबंदियों पर तनकीद की गई है। इसने कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचेगा और बैनुल अक्वामी कानूनी नज्म खतरे में पड़ जाएगा। अदालत का इसरार है कि वो आज़ादाना तौर पर काम करती रहेगी। गैर मुल्की बाशिंदों को जापानी ज़ुबान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उसूलों ज़वाबित सीखने में मदद फराहम करने के एक नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए जापानी हुकूमत ने मंगल के रोज़ माहरीन के एक पैनल का पहला इजलास मुनक़िद किया है। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसा माहौल पैदा करना है कि जिसमें लोग हमवार तरीके से जापानी मुआशरे के साथ मुताबिकत पैदा कर सकें। काबीना दफ्तर में गैर मुल्कियों के बारे में पॉलिसी के इंचार्ज वजीर मुमलकत सुजुकी हयातो ने कहा कि समाजी शमूलियत पर मबनी मुनज़्ज़म और जामे मुआशरे के क़याम के तनाजुर में इस प्रोग्राम का क़याम एक अहम मामला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका हदफ एक मुअस्सर मंसूबा तरतीब देना है। ये प्रोग्राम अमूमी तौर पर दरमियानी से तवील मुद्दती रिहायशियों का इहाता करेगा। ऑनलाइन सीखने का माहौल जापान से बाहर भी दस्तयाब होगा। प्रोग्राम के मवाद और मतलूबा शुरका के साथ साथ रिहायशी हैसियत की जाँच पड़ताल

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 20 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। टोक्यो के निकट चिबा प्रीफेक्चर में हुई रिकॉर्ड वर्षा को बृहस्पतिवार को एक सप्ताह पूरा हो गया। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा में 13 लोगों की मौत हुई, एक लापता हुआ और करीब 2,700 मकानों में पानी भर गया। चिबा शहर के अधिकारियों के अनुसार सड़कों पर बंद पड़े लगभग सभी वाहनों को हटा दिया गया है, लेकिन उनके मालिकों की पहचान करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। चिबा प्रीफेक्चर में 13 अगस्त की शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। चिबा शहर में मात्र आधे दिन में अगस्त महीने की औसत वर्षा से लगभग 3 गुना ज़्यादा बारिश हुई। प्रीफेक्चर के अधिकारियों के अनुसार 3 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 78 मकानों को गंभीर और 49 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 2,695 मकान बाढ़ से कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। समूचे प्रीफेक्चर में लगभग 2,700 वाहन बाढ़ के पानी में डूब जाने से खराब हो गए थे। इनमें से सड़कों पर बंद पड़े लगभग 2,500 वाहन बुधवार तक हटा लिए गए थे। एक स्थल पर रखे ऐसे कुछ वाहनों के मालिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। प्रीफेक्चर के सामने चुनौती है कि मालिकों को वाहन वापस करने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू का कहना है कि जापान सऊदी अरब और 5 अन्य खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूती लाने के लिए एक व्यापक सहयोग योजना तैयार करेगा। गौरतलब है कि ईरान में जारी घटनाक्रमों का इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मोतेगी ने बुधवार को रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। उन्होंने दोपहर के भोज पर चर्चा सहित लगभग 2 घंटे तक बातचीत की। मोतेगी ने शहजादा फैसल को बताया कि जापान अपनी पावर एशिया पहल के तहत एशिया क्षेत्र में तेल भंडार बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने प्रचुर ऊर्जा संसाधनों वाले सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की जापान की इच्छा भी व्यक्त की। शहजादा फैसल ने जापान की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उनका देश जापान सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। ईरान के हालात पर दोनों विदेश मंत्रियों ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के होर्मुज जलडमरू मध्य से मुक्त व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। जापान का रक्षा मंत्रालय वित्त वर्ष 2027 के लिए लगभग 90 खरब येन यानी करीब 57 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च बजट का अनुरोध करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय अनुमानित लागत का उल्लेख किए बिना AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियां अपनाने जैसे उपायों के लिए भी धन का अनुरोध करेगा। असल में ऐसी कुछ लागतों का अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि जापान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों में संशोधन को लेकर चर्चा वर्षांत तक जारी रहने की उम्मीद है। युद्ध में AI और ड्रोन का उपयोग करने वाले नए पैंतरों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय का अनुरोध रक्षा क्षमता पर केंद्रित रहेगा। इसमें देश की रक्षा की नींव मजबूत करने और लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय थल, समुद्री और वायु आत्मरक्षा बलों की देखरेख करने वाली संयुक्त अभियान कमान में AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियां अपनाना चाहता है। इसके अलावा मंत्रालय उन्नत क्लाउड सिस्टम शुरू करने और पानी के अंदर से प्रक्षेपित की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करने की भी योजना बना रहा है। मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित नीतियों का प्रभार संभालने के लिए एक नया कार्यालय बनाने पर भी विचार कर रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी डेवलपर कंपनी ओपनएआई का कहना है कि वो 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ चैट जीपीटी का एक नया संस्करण पेश कर रही है। ओपनएआई ने मंगलवार को चैट जीपीटी फॉर टीन्स की घोषणा की। कंपनी का कहना है कि यदि सिस्टम यह अनुमान लगाता है कि उपयोगकर्ता 18 वर्ष से कम आयु के हैं या यदि वे बताते हैं कि उनकी आयु 13 से 17 वर्ष के बीच है तो उन्हें स्वचालित रूप से किशोर संस्करण में डाल दिया जाएगा। ये संस्करण आत्महानि, भोजन संबंधी विकार और यौन या ग्राफिक सामग्री सहित उच्च जोखिम वाले विषयों से संबंधित बातचीत को प्रतिबंधित करता है। इसका स्टडी मोड छात्रों को सीधे उत्तर देने के बजाय चरण दर चरण सवाल पूछते हुए मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका में युवाओं के एआई के साथ अक्सर बातचीत करते हुए उस पर भावनात्मक रूप से निर्भर होने को लेकर चिंता बढ़ गई है। माता पिता और अन्य लोगों ने कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की है। जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जुलाई में 34.4 लाख से अधिक हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% की वृद्धि है। मार्च के बाद ये पहली वृद्धि है। चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दक्षिण कोरिया, ताइवान और अन्य जगहों से आने वाले पर्यटकों ने इस कमी की भरपाई कर दी है। जापान के राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का कहना है कि उसके प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई में जापान में 34,42,100 विदेशी पर्यटक आए, जो जुलाई महीने के लिए अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। देश या क्षेत्र के आधार पर हांगकांग को छोड़कर चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में द्विपक्षीय संबंधों में खटास के कारण 56.1% की गिरावट देखी गई। इस बीच 8,94,000 से अधिक सैलानियों के साथ दक्षिण कोरिया इस सूची में शीर्ष पर रहा, जो 31.9% की वृद्धि है। ताइवान से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी 26.4% की वृद्धि के साथ बढ़कर करीब 7,63,000 हो गई। पिछले साल जुलाई में हांगकांग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, जिसका कारण जापान में संभावित आपदा को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें थीं। इस जुलाई में हांगकांग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया और ये बढ़कर 2,72,000 से अधिक हो गई, जो 54.8% की वृद्धि है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: ताम-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: Oya, oya.そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारू जी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारू जी ने ताम से पूछा,
2: ताम-san, kaoiro ga warui desu yo.
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोउ shitan desu ka?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो ga itai n desu.
1: गले में दर्द है।
0: तब हारू जी ने कहा,
2: oya, oya.
1: ओह।
0: फिर हारू जी ने ताम को सलाह दी,
2: sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: ताम-san, देखता है ओ।
0: ताम बन गया।
4: हाय दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओ दाइजिनी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई
1: डेसु, यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताइन डेसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इताइन डेसु
1: के अंत में लगे
5: डेसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: डेसु। इताई डेसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: डेसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।

0: どうしたんですか？
1: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
3: पहले महिला ने कहा,
0: どうしたんですか?
2: क्या हुआ?
3: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
2: जवाब में पुरुष ने कहा,
1: अतामा का इताइन दिस।
3: सिर में दर्द है।
4: अतामा
2: का मतलब है सिर, इसलिए
4: अतामा का इताइ
2: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
1: नेत्स गा आरुन दिस।
3: बुखार है।
4: नेत्स
2: का अर्थ है बुखार, और
4: आरु
2: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना, तो
4: नेत्स गा आरु
2: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
4: देस
2: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
3: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
4: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
4: ओनाका,
2: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
4: इताई।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
0: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
3: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
4: किमोची गा वारुई।
3: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
1: किमोची गा वारुई देस। किमोची गा वारुई देस।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: ओदाइजिनी। ओदाइजिनी
3: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
2: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
5: お大事に。
6: お大事に。
7: お大事に。
3: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
8: タメさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
9: 喉が痛いんです。
8: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
9: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
2: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
3: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
2: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवा खाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
3: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।

0: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
1: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 20 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। टोक्यो के निकट चिबा प्रीफेक्चर में हुई रिकॉर्ड वर्षा को बृहस्पतिवार को एक सप्ताह पूरा हो गया। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा में 13 लोगों की मौत हुई, एक लापता हुआ और करीब 2,700 मकानों में पानी भर गया। चिबा शहर के अधिकारियों के अनुसार सड़कों पर बंद पड़े लगभग सभी वाहनों को हटा दिया गया है, लेकिन उनके मालिकों की पहचान करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। चिबा प्रीफेक्चर में 13 अगस्त की शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। चिबा शहर में मात्र आधे दिन में अगस्त महीने की औसत वर्षा से लगभग 3 गुना ज़्यादा बारिश हुई। प्रीफेक्चर के अधिकारियों के अनुसार 3 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 78 मकानों को गंभीर और 49 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 2,695 मकान बाढ़ से कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। समूचे प्रीफेक्चर में लगभग 2,700 वाहन बाढ़ के पानी में डूब जाने से खराब हो गए थे। इनमें से सड़कों पर बंद पड़े लगभग 2,500 वाहन बुधवार तक हटा लिए गए थे। एक स्थल पर रखे ऐसे कुछ वाहनों के मालिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। प्रीफेक्चर के सामने चुनौती है कि मालिकों को वाहन वापस करने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशीमित्सु का कहना है कि जापान सऊदी अरब और 5 अन्य खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूती लाने के लिए एक व्यापक सहयोग योजना तैयार करेगा। गौरतलब है कि ईरान में जारी घटनाक्रमों का इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मोतेगी ने बुधवार को रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। उन्होंने दोपहर के भोज पर चर्चा सहित लगभग 2 घंटे तक बातचीत की। मोतेगी ने शहजादा फैसल को बताया कि जापान अपनी पावर एशिया पहल के तहत एशिया क्षेत्र में तेल भंडार बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने प्रचुर ऊर्जा संसाधनों वाले सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की जापान की इच्छा भी व्यक्त की। शहजादा फैसल ने जापान की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उनका देश जापान सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। ईरान के हालात पर दोनों विदेश मंत्रियों ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के होर्मुज जलडमरू मध्य से मुक्त व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। जापान का रक्षा मंत्रालय वित्त वर्ष 2027 के लिए लगभग 90 खरब येन यानी करीब 57 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च बजट का अनुरोध करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय अनुमानित लागत का उल्लेख किए बिना AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियां अपनाने जैसे उपायों के लिए भी धन का अनुरोध करेगा। असल में ऐसी कुछ लागतों का अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि जापान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों में संशोधन को लेकर चर्चा वर्षांत तक जारी रहने की उम्मीद है। युद्ध में AI और ड्रोन का उपयोग करने वाले नए पैंतरों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय का अनुरोध रक्षा क्षमता पर केंद्रित रहेगा। इसमें देश की रक्षा की नींव मजबूत

करने और लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय थल, समुद्री और वायु आत्मरक्षा बलों की देखरेख करने वाली संयुक्त अभियान कमान में AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियां अपनाना चाहता है। इसके अलावा मंत्रालय उन्नत क्लाउड सिस्टम शुरू करने और पानी के अंदर से प्रक्षेपित की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करने की भी योजना बना रहा है। मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित नीतियों का प्रभार संभालने के लिए एक नया कार्यालय बनाने पर भी विचार कर रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी डेवलपर कंपनी ओपनएआई का कहना है कि वो 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ चैट जीपीटी का एक नया संस्करण पेश कर रही है। ओपनएआई ने मंगलवार को चैट जीपीटी फॉर टीन्स की घोषणा की। कंपनी का कहना है कि यदि सिस्टम यह अनुमान लगाता है कि उपयोगकर्ता 18 वर्ष से कम आयु के हैं या यदि वे बताते हैं कि उनकी आयु 13 से 17 वर्ष के बीच है तो उन्हें स्वचालित रूप से किशोर संस्करण में डाल दिया जाएगा। ये संस्करण आत्महानि, भोजन संबंधी विकार और यौन या ग्राफिक सामग्री सहित उच्च जोखिम वाले विषयों से संबंधित बातचीत को प्रतिबंधित करता है। इसका स्टडी मोड छात्रों को सीधे उत्तर देने के बजाय चरण दर चरण सवाल पूछते हुए मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका में युवाओं के एआई के साथ अक्सर बातचीत करते हुए उस पर भावनात्मक रूप से निर्भर होने को लेकर चिंता बढ़ गई है। माता पिता और अन्य लोगों ने कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की है। जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जुलाई में 34.4 लाख से अधिक हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% की वृद्धि है। मार्च के बाद ये पहली वृद्धि है। चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दक्षिण कोरिया, ताइवान और अन्य जगहों से आने वाले पर्यटकों ने इस कमी की भरपाई कर दी है। जापान के राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का कहना है कि उसके प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई में जापान में 34,42,100 विदेशी पर्यटक आए, जो जुलाई महीने के लिए अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। देश या क्षेत्र के आधार पर हांगकांग को छोड़कर चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में द्विपक्षीय संबंधों में खटास के कारण 56.1% की गिरावट देखी गई। इस बीच 8,94,000 से अधिक सैलानियों के साथ दक्षिण कोरिया इस सूची में शीर्ष पर रहा, जो 31.9% की वृद्धि है। ताइवान से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी 26.4% की वृद्धि के साथ बढ़कर करीब 7,63,000 हो गई। पिछले साल जुलाई में हांगकांग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, जिसका कारण जापान में संभावित आपदा को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें थीं। इस जुलाई में हांगकांग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया और ये बढ़कर 2,72,000 से अधिक हो गई, जो 54.8% की वृद्धि है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोउ शितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोउज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोउशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओदाइजिनी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताई देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इताइन देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताइन देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताइन देसु, नोदो गा इताइन देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा,
6: どうしたんですか？
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में पुरुष ने कहा,
7: अतामा का इताइन देसु,
0: सिर में दर्द है।
5: अतामा
1: का मतलब है सिर, इसलिए
5: अतामा का इताई
1: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
7: नेत्स गा आरुन देसु,
0: बुखार है।
5: नेत्स
1: का अर्थ है बुखार, और
5: आरु
1: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
5: नेत्स गा आरु
1: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
5: देस
1: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
5: ओनाका,
1: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
5: इताई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
5: किमोची गा वारुई।
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
7: किमोची गा वारुई देस। किमोची गा वारुई देस।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: ओदाइजिनी।
5: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो, तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
8: お大事に。お大事に。お大事に。
0: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: 春さんの知恵袋。
1: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
0: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
1: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवाखाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवाखाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
0: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
1: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
0: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी जलने बुझने लगी। वो ताम से मुखातिब हुई।
1: तामसान, खाओई रोगा वारुई देसियो।
2: तामसान, आपका चेहरा पीला पड़ गया है।
1: दोष तान देस का?
2: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया।
3: नोदो गा इताई देस।
2: गले में दर्द है,
0: हारूसा ने कहा।
1: ओया ओया।
2: अरे अरे।
0: इसके बाद हारूसा ने ताम को एक मशवरा दिया।
1: सोन्ना तोकी निवा शोगा हचिमित्सुयु गा ई देसियो।
2: ऐसे वक्त अदरक और शहद का कहवा अच्छा होता है,
0: मियाँ कहती है।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
2: काइटो अभी बना रहे हैं।
0: काइटो अदरक और शहद का गर्मा गर्म कहवा लेकर बैठक में दाखिल होता है और कहता है,
4: तामसान देखता है।
2: तामसान, कहवा तैयार है।
4: हाय दोज़ो।
2: ये लें।
0: मियाँ ताम से मुखातिब होकर कहती है,
3: ओदाइजिनी।
2: अपना ख्याल रखें।
0: गले में दर्द या खांसी के वक्त अदरक और शहद का कहवा वाकई बेहतरीन है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। पिसे हुए अदरक और शहद पर गर्म पानी डालें और जादुई कहवा तैयार।
2: उम्मीद है ये जादुई मशरूब पीकर ताम का गला ठीक हो जाएगा। फिलहाल आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
1: तामसान, खाओइरो गा वारुई देसियो। दोशितान देस्का?
3: नोदो गा इताई देस।
1: ओया ओया। सोन्ना तोकी निवा शोगा हचिमित्सुयु गा ई देसियो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामसान, देकिता यो। はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, गले में दर्द है।
3: のどが痛いんです。
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए तबीयत की खराबी के बारे में बता सकते हैं।
2: नोदो के मानी है गला। इसके साथ हर्फ जार गा लगाया गया है क्योंकि दर्द गले में है, यानी जुमले का मौजू गला है। और इताइंदिस के मानी है दर्द है। आज का नुक्ता इताइंदिस में पोशीदा है और वो है न्देस। किसी को अपनी तबीयत की खराबी के बारे में बताने के लिए जुमले के आखिर में न्देस इस्तेमाल किया जाता है। इताइंदिस ई इसमें सिफत इताई यानी दर्द के साथ न्देस लगाकर बनाया गया है। आज के मकालमे में ताम ने हारूसान को अपनी तबीयत की खराबी के बारे में बताने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया है।
0: तो सामईन अब सुनिए और दोहराइए।
5: इताई देस। नोदो गा इताई देस। नोदो गा इताई देस।
0: जी सामईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
2: अब सेहत के दीगर मसाइल से मुतालिक एक मकालमा सुनिए।
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: अब इस मकाल में की तशरी।
3: どうしたんですか？
0: क्या हुआ?
2: ये जुमला किसी से उसकी तबीयत की खराबी के मुतालिक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो के मानी है कैसा या क्या। ये बहुत मुफीद जुमला है, इसे याद कर लेना बेहतर होगा।
6: 頭が痛いんです。
0: सर में दर्द है।
2: अतामा के मायनी है सर, चुनांचे अतामा गा इताई का मतलब हुआ सर में दर्द।
6: नेत्सु गा आरुन देस।
0: मुझे बुखार है।
2: नेत्सु के मायनी है हरारत या बुखार। आरु एक फेल है जिसका मतलब है होना, चुनांचे नेत्सु गा आरु का मतलब हुआ बुखार होना। इस जुमले से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें सिफत की तरह फेल के बाद भी देस लगाया जा सकता है।
0: अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
2: अब सेहत के कुछ और मसाइल के साथ मशक करें। मसलन आपके पेट में दर्द है तो ये बात किस तरह कहेंगे? पेट की जापानी है
5: ओनाका, ओनाका।
2: और दर्द को कहते हैं
5: इताई, इताई।
2: तो सामीन कोशिश करें।
3: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
2: और अगर आपको मतली की कैफियत महसूस हो रही हो तो कैसे कहेंगे? चक्कर या मतली जैसी कैफियत को कहते हैं
5: किमोची गा वारुई, किमोची गा वारुई।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 20 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। टोक्यो के निकट चिबा प्रीफेक्चर में हुई रिकॉर्ड वर्षा को बृहस्पतिवार को एक सप्ताह पूरा हो गया। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा में 13 लोगों की मौत हुई, एक लापता हुआ और करीब 2,700 मकानों में पानी भर गया। चिबा शहर के अधिकारियों के अनुसार सड़कों पर बंद पड़े लगभग सभी वाहनों को हटा दिया गया है, लेकिन उनके मालिकों की पहचान करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। चिबा प्रीफेक्चर में 13 अगस्त की शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। चिबा शहर में मात्र आधे दिन में अगस्त महीने की औसत वर्षा से लगभग 3 गुना ज़्यादा बारिश हुई। प्रीफेक्चर के अधिकारियों के अनुसार 3 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 78 मकानों को गंभीर और 49 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 2,695 मकान

बाढ़ से कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। समूचे प्रीफेक्चर में लगभग 2,700 वाहन बाढ़ के पानी में डूब जाने से खराब हो गए थे। इनमें से सड़कों पर बंद पड़े लगभग 2,500 वाहन बुधवार तक हटा लिए गए थे। एक स्थल पर रखे ऐसे कुछ वाहनों के मालिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। प्रीफेक्चर के सामने चुनौती है कि मालिकों को वाहन वापस करने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु का कहना है कि जापान सऊदी अरब और 5 अन्य खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूती लाने के लिए एक व्यापक सहयोग योजना तैयार करेगा। गौरतलब है कि ईरान में जारी घटनाक्रमों का इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मोतेगी ने बुधवार को रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। उन्होंने दोपहर के भोज पर चर्चा सहित लगभग 2 घंटे तक बातचीत की। मोतेगी ने शहजादा फैसल को बताया कि जापान अपनी पावर एशिया पहल के तहत एशिया क्षेत्र में तेल भंडार बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने प्रचुर ऊर्जा संसाधनों वाले सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की जापान की इच्छा भी व्यक्त की। शहजादा फैसल ने जापान की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उनका देश जापान सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। ईरान के हालात पर दोनों विदेश मंत्रियों ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के होर्मुज जलडमरू मध्य से मुक्त व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। जापान का रक्षा मंत्रालय वित्त वर्ष 2027 के लिए लगभग 90 खरब येन यानी करीब 57 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च बजट का अनुरोध करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय अनुमानित लागत का उल्लेख किए बिना AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियां अपनाने जैसे उपायों के लिए भी धन का अनुरोध करेगा। असल में ऐसी कुछ लागतों का अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है क्योंकि जापान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों में संशोधन को लेकर चर्चा वर्षांत तक जारी रहने की उम्मीद है। युद्ध में AI और ड्रोन का उपयोग करने वाले नए पैंतरों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय का अनुरोध रक्षा क्षमता पर केंद्रित रहेगा। इसमें देश की रक्षा की नींव मजबूत करने और लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय थल, समुद्री और वायु आत्मरक्षा बलों की देखरेख करने वाली संयुक्त अभियान कमान में AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियां अपनाना चाहता है। इसके अलावा मंत्रालय उन्नत क्लाउड सिस्टम शुरू करने और पानी के अंदर से प्रक्षेपित की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करने की भी योजना बना रहा है। मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित नीतियों का प्रभार संभालने के लिए एक नया कार्यालय बनाने पर भी विचार कर रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी डेवलपर कंपनी ओपन एआई का कहना है कि वो 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ चैट जीपीटी का एक नया संस्करण पेश कर रही है। ओपन एआई ने मंगलवार को चैट जीपीटी फॉर टीन्स की घोषणा की। कंपनी का कहना है कि यदि सिस्टम यह अनुमान लगाता है कि उपयोगकर्ता 18 वर्ष से कम आयु के हैं या यदि वे बताते हैं कि उनकी आयु 13 से 17 वर्ष के बीच है, तो उन्हें स्वचालित रूप से किशोर संस्करण में डाल दिया जाएगा। ये संस्करण आत्महानि, भोजन संबंधी विकार और यौन या ग्राफिक सामग्री सहित उच्च जोखिम वाले विषयों से संबंधित बातचीत को प्रतिबंधित करता है। इसका स्टडी मोड छात्रों को सीधे उत्तर देने के बजाय चरण दर चरण सवाल पूछते हुए मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका में युवाओं के एआई के साथ अक्सर बातचीत करते हुए उस पर भावनात्मक रूप से निर्भर होने को लेकर चिंता बढ़ गई है। माता पिता और अन्य लोगों ने कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की है। जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जुलाई में 34.4 लाख से अधिक हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% की वृद्धि है। मार्च के बाद ये पहली वृद्धि है। चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दक्षिण कोरिया, ताइवान और अन्य जगहों से आने वाले पर्यटकों ने इस कमी की भरपाई कर दी है। जापान के राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का कहना है कि उसके प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई में जापान में 34,42,100 विदेशी पर्यटक आए, जो जुलाई महीने के लिए अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। देश या क्षेत्र के आधार पर हांगकांग को छोड़कर चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में द्विपक्षीय संबंधों में खटास के कारण 56.1% की गिरावट देखी गई। इस बीच 8,94,000 से अधिक सैलानियों के साथ दक्षिण कोरिया इस सूची में शीर्ष पर रहा, जो 31.9% की वृद्धि है। ताइवान से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी 26.4% की वृद्धि के साथ बढ़कर करीब 7,63,000 हो गई। पिछले साल जुलाई में हांगकांग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, जिसका कारण जापान में संभावित आपदा को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें थीं। इस जुलाई में हांगकांग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया और ये बढ़कर 2,72,000 से अधिक हो गई, जो 54.8% की वृद्धि है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखिता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाय, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओ दाइजी नी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताइन देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
5: इताइन देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताइन देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
6: दोस्तान देस का?
7: अतामा गा इताइन देसु, नेत्स गा आरुन देसु।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा,
6: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में पुरुष ने कहा,
7: अतामा गा इताइन देसु,
0: सिर में दर्द है।
5: अतामा
1: का मतलब है सिर, इसलिए
5: अतामा गा इताई
1: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
7: नेत्स गा आरुन देसु,
0: बुखार है।
5: नेत्स
1: का अर्थ है बुखार, और
5: आरु
1: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
5: नेत्सु गा आरु
1: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
5: देस
1: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
5: ओनाका,
1: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
5: इताई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
5: किमोची गा वारुई।
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
7: किमोची गा वारुई देस। किमोची गा वारुई देस।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: ओदाइजिनी।
5: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
8: お大事に。
9: お大事に。

0: बाय जिनी।
1: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
5: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
1: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवा खाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
5: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
1: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
5: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
5: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।